ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आज रविवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026, दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर।

नन्हे जैसलमेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे साथियों का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और हर इतवार की तरह से इतवार दिन करने आपसे गुफ्तगू और दिल की ढेरों बातें साझा लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम। तो प्यारे बच्चों, हम करेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत जय हिंद के साथ। और मैं हूँ आपकी दीदी प्रीति भाटिया। तो मेरी तरफ से मेरे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को ढेर सारा प्यार। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं, और वो है प्यार। प्यार के कई रूप होते हैं, वो अलग बात है बच्चों की अभी हमारी मानसिकता ना इतनी संकीर्ण हो रही है कि हम बस हमेशा इस शब्द को जब भी सुनते हैं तो हम वही फिल्मी कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं, देखते हैं। प्यार तो कितने रूपों में होता है। आप सोचिए कि सबसे अच्छा प्यार का उदाहरण पता है क्या है, कि एक माँ अपने बच्चे को तब से प्यार करना शुरू करती है जब से उसने अपने बच्चे को देखा ही नहीं होता है। और इसीलिए देखिए बच्चों, हम कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड। बस लव इज ब्लाइंड इसलिए होता है क्योंकि हमारी माँ हमें तब से प्यार करती है जब से तो हम पता नहीं कहते हैं, उसे पता ही नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि हम लड़के के रूप में आएंगे या लड़की के रूप में आएंगे, पर बस बे इंतहा प्यार हमें मिलता है। तो ये प्यार हमें क्या सिखाता है? सिर्फ ये सिखाता है कि बस हर कोई हमें प्यार करे, या ये सिखाता है कि हम भी प्यार बांटते चलें। और आज के समय में बच्चों ऐसा समय आ गया है ना जब तो आप जानते हैं कि एक परिवार में, एक घर में, एक मोहल्ले में रहने वाले लोग, समाज में, एक शहर में और एक देश में रहने वाले लोग भी आपस में कितना लड़ते हैं। तो ऐसे में हमें उनसे प्यार और मोहब्बत सीख लेनी चाहिए जो बहुत ही प्यारे हैं, जिन्हें हम शायद कुछ दें ना दें लेकिन वो फिर भी हमारे प्रति बहुत वफादार रहते हैं। आप सोचिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी सुबह जब हम खिड़की खोल के बाहर की ठंडी ठंडी से हवा महसूस करते हैं ना बच्चों, तो साथ में हमारी वो साथी हमें एक आवाज़ के जरिए बताती है कि गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। सुनिए आपने कभी चिड़ियों की चहचहाट? और याद करिए अपने बचपन को जब आप खाना नहीं खाते थे और मम्मी, दादी, मौसी, बुआ घर आंगन में, घर के बाहर या बालकनी में आपको लेके बैठती थी और कहती थी ये देखो कबूतर आया, चिड़िया आई, गोरैया आई, तोता आया। याद करिए आपके बचपन के सभी खेल, सभी खिलौने। हर खेल खिलौने में कोई ना कोई हाथी मामा, बंदर, शेर की तरह आवाज़ निकालना, पता नहीं कितनी चीज़ें थी। और वो टेडी बियर जो हम सबको पसंद होता है, टेडी बियर क्या होता है बच्चों? टेडी बियर भी तो एक जानवर होता है। तो आप गौर फरमाएंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम और हमारे दिल के तार जानवरों के साथ तो जुड़े हुए हैं। जानवर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ जानवर हमें बताते हैं। तितली जो न जाने कैसे कुदरत के तमाम रंगों को अपने पंखों में समेटती है, मधुमक्खी जो डंक मार के तो चाहिए हमें सुझा देती है, सूजन आ जाती है ना बच्चों मधुमक्खी के डंक मारने पर वो मधुमक्खी कितना मीठा सा शहद बनाती है। तो देखिए जिंदगी के कितने रंग हैं, हर रंग में हम इस कुदरत के साथ, इन जीवों के साथ जुड़ सकते हैं। और जो पशु होते हैं ना बच्चों, वो हमारे मित्र होते हैं, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा ये पशु होते हैं। अब हम इन पशुओं से अगर मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हम इन पशुओं से प्यार नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? तो हमें बिल्कुल स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और इन पशु पक्षियों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम चाहते हैं कोई हमें करे। अच्छा, बातें ना बहुत सारी हैं आज के बिटारे में, पर मैंने सोचा कि बात हो रही है पशुओं की, पक्षियों की, प्रकृति की, इंजॉय जो हमारे जीवन को महका देते हैं अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, उनकी बात हो रही है। तो एक ऐसा गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो जब मैं आप ही की तरह छोटी सी थी ना, मतलब छोटी थी, स्टूडेंट थी, तब से सुन रही हूँ। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा, बहुत मीठा सा गीत।

तो सुना है आपने ये बचपन का प्यारा सा गीत कि जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, हम ऐसे ही थोड़ी ना इस छोटे से प्यारे से गीत को सुन लेंगे और मैं आपसे और बातें करने लगूंगी। बल्कि आज के पिटारी में ना यही गाने, इसी तरह के मीठे मीठे गाने और भी हैं, पर चलिए पहले इस गीत को तो पूरा सुन लें, पूरा गुनगुना लें, क्योंकि जितना गीत संगीत की दुनिया में जाते हैं उतना ही हमें फील गुड होता है। तो याद करिए आपके बचपन का ये गीत।

वो जंगल में खो गया। अब आप जानते हैं जंगल कितने डेंस होते हैं ना, कितने बड़े होते हैं। अगर एक बच्चा जंगल में खो जाए तो बहुत कम चांसेस रहते हैं बच्चे कि वो उससे बाहर सफल आ पाएगा। अब ऐसे में वो छोटा सा बच्चा भटकते भटकते जहाँ पहुँचा इस भेड़ियों के झुंड के पास। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, सामान्यतः हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भेड़ियों का झुंड होगा तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को मार लेंगे, खा लेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन जानते हैं जानवरों में भी प्यार होता है, उनमें भी सहानुभूति होती है, दया होती है, सारी जो चीज़ें हैं ना ये जानवरों में भी होती है। लेकिन भेड़िया भी झुंड में उसे अपनाया और उसे अपनी ही तरह से अपने ही साथ जैसे बड़ा करा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोगली उनके साथ रहते रहते जंगल में जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जानवर छलांग लगाते हैं ना, उस तरह से छलांग लगाता था, उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। और जंगल में सबसे अच्छा अच्छा दोस्त था बल्लू भालू, उसने उससे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और जब भी मोगली कभी भी मुश्किल समय में फंसता उसके पशु मित्र बिना किसी स्वास्थ्य के उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाते। एक बार जंगल में बड़ा खतरा आया, सभी जानवर एकजुट होकर मोगली की रक्षा के लिए खड़े हो गए। तब मोगली ने समझा कि सच्ची दोस्ती है ना, न तो भाषा देती है, रूप न जाती ना रंग, क्योंकि दोस्ती से समय की चीज होती है। आप जिनकी दोस्ती करते हैं ना जरूरी नहीं हो बिल्कुल आगे से हो, आप अपने से बिल्कुल अलग लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं। पर बस बात सिर्फ इतनी है कि जब भी हम किसी से दोस्ती करें तो उसको निभाएं और आप जानवरों को अपना दोस्त बनाएं। जब आप इन्हें अपना दोस्त बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप चीज़ें कितनी सुंदर हैं। कैसे हम इन्हें एक जानवर मानते हैं बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगली बार किसी गाय के ऊपर बेवजह पानी नहीं गिराना, किसी कुत्ते का मत चिढ़ाना, और जब किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएँ, पार्क में जाएँ, तो बिल्कुल डिस्टेंट वे में बिहेव करना। तो बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं अपने सितारे में, पर बातें ही करती रहूँगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इन बातों के साथ मैं ले चलती हूँ सुनाने आपको एक और मीठा सा गीत।

किनारे खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे सारे आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू

0: मेहमान
1: तुम। गरी सर अब गए नहीं, अब तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक
3: जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चख ले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे।

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर,
3: खोलो दरवाजे पर ते करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपनी ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना।

रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है।

बच्चों, हमने बेहद प्यारा गीत सुना, बिल्कुल उतना ही प्यारा जितने प्यारे आप हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप में जो पावर है, आप में जो एनर्जी है, जो आप में क्षमताएं हैं, जो आप में ज्ञान है और जो करने में आप सक्षम हैं, वो असीमित है। पता नहीं क्यों जब आपको कोई कहता है अरे तुझे दो नंबर कमाए, तो आप हार के जाते हैं। पता नहीं क्यों आप खुद ही समझ जाते हैं कि काम मुझसे नहीं होगा, पर मैं जानती हूँ कि मेरे नन्हे साथियों में कितनी क्षमताएं हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में हारना नहीं है, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और आगे जब आप बढ़ना शुरू करेंगे ना, तो देखिए मुश्किलें तो आएगी ही आएगी, लेकिन हर मुश्किल से पार भी बहुत कुछ होता है। आप जानते हैं, जो इंसान कभी ज़िंदगी में कभी भी जो इंसान हारा नहीं हो, उसे कैसे पता होगा कि जीतना क्या होता है। तो इसलिए अगली दफ़ा ना, जब आप कहीं थोड़ा सा हारने लगे, तो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना रुकें। और आप कभी ये ना सोचें कि अरे ये मैं कर नहीं सकती या ये मैं कर नहीं सकता। आपकी पावर

आपको खुद को ही नहीं पता, क्योंकि आपने तो एक हार में ही स्वीकार कर लिया। तो इसलिए आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। जिंदगी खूबसूरत है, पर अगर हम दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बच्चों कब तक खूबसूरत रहेगी। आपने सुना है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, तो आज मैं आपको बस वही एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं हमारी तरह ही ये जो धरती है ना, ये जितनी हमारी है उतनी ही पशु पक्षियों की भी है, इन वन्य जीवों की भी है। पर इंसान ने स्वीकार कर लिया कि वही मालिक है। इंसान ने मान लिया कि हमारा फायदा ही सर्वोपरि है। इंसान खुद ही खुद डिसाइड कर लेता है, ये मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा इतना मेरा है, यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ पत्थर को काटूंगा, यहाँ पहाड़ को तोड़ दूंगा, इस नदी के पानी को रोक दूंगा और उसे मोड़ दूंगा। और ऐसा सब जो हम कर रहे हैं ना बच्चों, इसे हम विकास कहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम आदिम जमाने में जैसे रहते थे वैसे तो आज रह नहीं सकते। पर क्या हमारे विकास की कीमत सिर्फ ये मूक प्राणी अदा करें ठीक होगा? नहीं होगा। अब सोचिए, हम तो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर पाते कि हमारे घर के बाहर कोई गाय, कोई बकरी, कुत्ते आकर के बैठ जाए, हम तो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो कैसे हमने इनके जंगलों को साफ करा है और इनके जितने भी जंगल हैं उसमें हमने अपना आधिपत्य करा है। पर फिर भी हमने सोचा कि इस तरह से तो हम हर वो स्थान लेते जाएंगे जो इनके लिए भी बना हुआ है। प्रकृति जितनी हमारी है उतनी इनकी भी है। तब हमने कुछ ऐसे स्थान निर्धारित किए बच्चों, जहाँ पे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के कि कोई इन्हें पकड़ ना ले, इनका शिकार ना कर ले, इन्हें मार ना दे, इन्हें खा ना जाए, हमने वो स्थान इनके लिए रख दिए हैं। ऐसी जगह को बच्चों हम कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव तो आप जानते हैं क्या होता है। अभ्यारण्य शब्द अभय और आरण्य दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। अभय यानी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, आरण्य यानी जंगल। तो जब हम किसी बिना डर के जंगल, बिना किसी डर के जो जंगल है उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। ऐसे कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे केलनादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, गिर फॉरेस्ट है गुजरात, आपने सुना होगा ना, जहाँ पे एशियाटिक लॉइन होते हैं, हरियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सारे इन वन्य जीवों को हम मनुष्यों से सुरक्षित रखने के लिए बने हैं, ताकि ये वन्य जीव जो है वो न केवल अपने घर में आराम से रहें बल्कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो जंगल के शेर, बाघ, हिरण, हाथी, मोर, ये सभी सुरक्षित रहें, इसलिए हमने बनाए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और जानवरों का शिकार करना, उन्हें परेशान करना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए दंड है। इन स्थानों पर वन अधिकारी, वन रक्षक दिन रात उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, ताकि जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रह सके। तो बच्चों, जब भी आप किसी वन्य जीव अभ्यारण्य की सैर करें, राष्ट्रीय उद्यान की सैर करें, तो याद रखें कि इन्हें परेशान नहीं करना है। इन्हें कुछ भी खाने के लिए चिप्स या ऐसी चीज ना फेंकें, बहुत तेज आवाज ना करें क्योंकि उनके घर है, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, कूड़ा ना फैलाएं और उनका सम्मान करें। तो जो ये जंगल है बच्चों, ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, ये तो प्रकृति का श्रृंगार है। यहाँ जो इतने घने पेड़ हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर मैं कहूँ ये धरती के फेफड़े हैं, तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। चलिए, बातें तो बहुत है आपको कहने के लिए, पर अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसा प्यारा सा गीत जिसे सुन के आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। जब कभी ज़िंदगी में कहीं अटक रहे होंगे तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आइए गुनगुनाते हैं, सुनते हैं कौन मीठा तरी।

तो प्यारे बच्चों, फिल्म इकबाल का ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर हाल में हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना, मतलब हमें हमेशा उम्मीद रखनी है। कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, चीज़ें हमारे हक में ना हो, लोग हमारे हक में ना हो, कोई फैसला हमारा पक्ष ना ले रहा हो, यानी सब चीज़ें जब विरोधी हो जाए, विपरीत हो जाए, आप कुछ ना कर पाए, तब भी एक छोटी सी आशा ना, छोटी सी आशा आपके कान ना के हौले से बुदबुदाएगी कि सब्र रखो, हो जाएगा। और बस आपकी रेडियो दीदी आपको यही कहती है, अच्छे बने रहें, सच्चे बने रहें, झूठ का साथ ना दें, झूठ से झूठे लोगों से दूरी बनाए रखें, किसी के साथ इतना गलत ना करें कि वो इंसान रो पड़े और आपको भी एक दिन रोना पड़े। तो चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, सबको समान भाव से प्यार देते रहें। इसी के साथ घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, ढेरों बातें होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और मेरी बात याद रखिए, मुस्कुराहट जो है वो बांटने से बढ़ती है, तो जितनी मुस्कुराहटें बांटेंगे उतनी ही बढ़ती रहेगी। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो दीदी प्रीति भाटिया आपसे इजाजत लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

एसएमएन 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:23 हुए हैं। आइए सुनते हैं।

जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।

जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे।

तो अभी आपने सुना थ्री इडियट्स फिल्म के गीत को, जिसे लिखा स्वानंद किरकिरे ने, संगीत से सजाया शांतनु मोइत्रा ने, आवाज थी सोनू निगम की।

0: हरिहरन और चित्रा की आवाज़ में अभी आपने सुना अफलातून फिल्म के इस गीत को। इस गीत की धुन बनाई आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया दिलीप सैन समीर सैन ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
5: सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बॉम्बे फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई महबूब ने, संगीत से सजाया ए आर रहमान ने।

चलते चलते फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना अभिजीत व साथियों की आवाज में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया आदेश श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला आखिरी गीत फिल्म दिल तो पागल है से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर या आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ

0: जयपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मॉनसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

और कल की बारिश से खुशनुमा हुए मौसम को देखते हुए हम आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम निमय लेकर। मैं आपकी रेडियो सखी सुधा पुरोहित और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सखियों, आज की बात में हम बात करेंगे वन्यजीवों के प्रति सहृदयता कैसे रखी जाए, उदारता कैसे रखी जाए। आज की चर्चा रविवार का सही सदुपयोग कीजिए और शुचिता और स्वास्थ्य, साथ ही साथ घर को कैसे साफ सुथरा रखा जा सकता है, कैसे जालों से मुक्त किया जा सकता है, इन सब कार्यक्रमों के साथ हम हाजिर है आपकी खिदमत में। तो सखियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की। जी हाँ, आज की बात में वन्य जीवों के प्रति जो उदारता बताई जाती है हम उसको जानेंगे। सखियों, जीवों के प्रति उदारता और करुणा रखना मानवता का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए है। इसके लिए हमें जैसे गर्मी में पानी के बर्तन रखना, घायल पशुओं की मदद करना और बेजुबानों के प्रति क्रूरता से बचना चाहिए। इन जीवों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रत्येक जीव प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानवरों के प्रति दया और प्रेम न केवल हमारी मानवता को दर्शाता है बल्कि समाज में सद्भाव भी लाता है। हालांकि पशु पक्षी अपना दर्द तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान के प्यार को बखूबी समझते हैं। हमें उनके साथ हमेशा प्रेम पूर्वक ही पेश आना चाहिए। जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित रखते हैं, इससे उनकी रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव करके और जीवों के प्रति सच्ची उदारता दिखानी चाहिए। जैसे कि गर्मियों में अपनी छत या बालकनी में आप पक्षियों के लिए पानी और दाना अवश्य रखिए, और आवारा या गली के जो जानवर है, गाय हैं, उनको नियमित रूप से भोजन देना चाहिए, और सर्दियों और बारिशों के लिए हमें आश्रय का ध्यान रखना चाहिए। घायल पक्षियों और आवारा जानवरों का भी इलाज करवाना चाहिए। स्थानीय पशु चिकित्सक से हम संपर्क कर सकते हैं और पशुपालन विभाग राजस्थान की

कोई है, क्योंकि जीवन पर सचों जीवों पर दया करना हमारी मानवता की पहचान है। यह न केवल उनके जीवन की रक्षा करता है बल्कि समाज में भी शांति लेकर आता है, पर्यावरण को संतुलित रखता है, मनुष्य की भीतर सहानुभूति, धैर्य और श्रेष्ठ नैतिक गुणों का विकास करता है। मनुष्य होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम बेजुबान जानवरों की दर्द और पीड़ा को समझें। जीवों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद करता है। और अगर हम भारतीय धर्म की बात करें और परंपरा की बात करें, तो भारतीय परंपरा और विभिन्न धर्मों में जीव दया को तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है, और हमें ये सिखाता है कि सभी प्राणियों में उस परम पिता का अंश है, क्योंकि हमारा धर्म यही कहता है कि सत्य पर जो कुछ भी है उसमें परमात्मा का अंश पाया जाता है। जानवरों की देखभाल करने से हमारे अंदर दया, करुणा और वफादारी जैसे सकारात्मक मानवीय मूल्य विकसित होते हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। तो जानवरों के प्रति हमें अपने हृदय में, वन्य जीवों के प्रति हमें अपने मन में करुणा का भाव रखना चाहिए, और करुणा दया का पाठ हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखते हैं, तो पशुओं की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। आगे हम चर्चा में जानेंगे कि रविवार का यानी आज के दिन का हम सही सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन बातों को एक बार विराम देते हुए हम चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा।

0: उसी गाने के साथ में हम बात करते हैं आज के दिन की, जहाँ सखी और आश्रय रविवार, क्योंकि हर हफ्ते आता है, लेकिन रविवार का सही उपयोग सदुपयोग हमें करना चाहिए। छुट्टी का दिन होता है, और अगर आप वर्किंग वूमन है और अगर या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप भी संडे का काफ़ी बेसब्री से इंतजार करती होंगी, लेकिन रविवार का सही उपयोग हमें आध्यात्मिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आगामी सप्ताह की जो योजना है उसको बनाने के लिए करना चाहिए। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति की है और धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कीजिए और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और चावल डालकर सूर्यदेव को अर्पित कीजिए। रविवार का जो दिन है उसमें अगर कहते हैं कि धार्मिक कार्य किए जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में भी सकारात्मकता आती है। तो ये तो बात हुई कि धर्म के इस दिन लोग गेहूँ का, गुड़ का, तांबे के बर्तन का दान करते हैं, नमक से परहेज करके साथियों को उपवास भी रखते हैं और ओम सूर्य नमक का जाप भी करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ कि चलो ठीक है हम धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम आध्यात्मिक शांति के लिए करें, बाकी इस दिन आपको आने वाले जो 6 दिन हैं उनके कार्यों की सूची बनानी चाहिए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए कि आगे आने वाले जो 6 दिन हैं उसमें आप क्या क्या काम करेंगे, आपका क्या टारगेट है, आपको क्या करना है, और परिवार के साथ भी आपको गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए और घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाओं को आमतौर पर संडे को पूरे घर की सफाई का जो भार है वो सहन करना ही पड़ता है। और इसके साथ ही साथ आप बच्चों को जो अगर स्कूल जाते हैं तो आप उनका जैसे बैग धोना है, शूज है वो धोने हैं, तो ऐसे काम भी आप कर सकती हैं। और साथ साथ बच्चों की पूरा 6 दिन का जो शेड्यूल है कि स्कूल जाएंगे तो क्या बना के देना है नाश्ते में, और 6 दिन उनके स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको धो के प्रेस करना, तह जमा के रखना, बाकी कपड़ों को तह जमा के रखना, ये सब हम कर सकते हैं। एक सच है सखियों, है तो कड़वा लेकिन सच है कि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो सोचती हूँ कि संडे आएगा तो हम आराम करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे साथ में होता नहीं है, क्योंकि हम वर्किंग वूमन अगर है तो हमें संडे को काफ़ी काम होते हैं कि ये काम भी करके रखना है, वो काम करके भी रखना है, ताकि आगे के जो 6 दिन है जब हम ऑफिस या स्कूल में जॉब करते हैं और हम जाएंगे तो हमारे काम में कुछ सहूलियत हो, क्योंकि बाकी के 6 दिन तो सुबह अगर वर्किंग वूमन है तो सुबह से लेकर पूरे रात तक तो भाग दौड़ बनी रहती है, तो छोटे छोटे काम करके हम संडे को अगर करते हैं तो हम बाकी के जो 6 दिन हैं उनको अपना काम का जो बर्डन है वो कम कर सकते हैं। हाँ एक बात और है कि अगर आपका काम ज़्यादा नहीं है तो आप संडे को कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं, कहीं मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। अब ये सोचते कि इनसे क्या होता है, तो इनसे यही है कि मन को एक सुकून सा मिलता है, एक शांति मिलती है कि चलो हम अपने लिए भी तो कुछ कर रहे हैं और हम अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए जा सकते हैं रविवार को। और सबसे बड़ी बात ये तो यही है कि ये तो अधिकतर लोगों के लिए सप्ताह का खास दिन होता है, ये उनके ये दोस्तों के साथ घूमने फिरने और ख़रीदारी करने, जन्मदिन की पार्टियों में शामिल होने, कई कार्यक्रमों में जाने या रोमांचक यात्राओं पर जाने का भी मौका होता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि कई लोगों को कि रविवार को हम आराम कर सकते हैं या खुद को आराम दे सकते हैं। बाकी है तो बहुत मुश्किल कि हम मौज मस्ती में रविवार को निकाल पाएँ, क्योंकि हफ्ते भर के जो काम होते हैं ना वो सारे रविवार को ही याद आते हैं। और मुझे तो भाई सैटरडे को, शनिवार को घर इतना गंदा लगता है, रोज़ की तरह ही होगा, रोज़ साफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऐसे बिखराव जो होता है ना वो फ्राइडे या सैटरडे को ही होता है और संडे को फिर वो सारा काम करना पड़ता है। काम तो काम है सखियों, हम हंसते करें, पैरों से करें, हमें करना ही है, तो क्यों ना हम अपने संडे को यादगार बनाएं, उसका सदुपयोग करें, अपने जो काम है बाकी के 6 दिनों के उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं कि, और किचन में भी हम तैयारी कुछ ऐसी होती है तैयारी तो हम करके रख सकते हैं जिससे कि हमारे बाकी के 6 दिन हमें किचन में ज़्यादा कुछ ना करनी पड़े, हम अपने बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं और बच्चों की किताबें कॉपियाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि 6 दिन में किस तरह से काम किया है, होमवर्क पर धुआ नहीं है, कहीं उनके कोई कवर फट तो नहीं गए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म पर ध्यान देना, उनकी फीस देना। तो ये ऐसे काम करते हैं। सबसे बड़ी जो बात मैंने कही कि हम अपनी परिवार के लिए आध्यात्मिक शांति के लिए थोड़ा सा धर्म का सहारा भी दे सकते हैं। बातें आपके आगे भी जारी रहेगी। आइए सुनते हैं दो जरूरी संदेश और एक खूबसूरत सा गाना।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
2: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
7: So easy.
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कह रही थी अभी आपने सुना दिल पे फिल्म का ये गाना जिसमें आवाज थी उदित नारायण और महालक्ष्मी ने। अब हम बात करते हैं सुचिता और स्वास्थ्य की। जी हाँ, सुचिता का अर्थ होता है स्वच्छता। स्वच्छता और स्वास्थ्य का सच में आपस में गहरा और अटूट संबंध होता है। स्वच्छता ही स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण और व्यक्तिगत साफ सफाई हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और खुशहाली की नींद भी रखती है। यह जीवन शैली को बेहतर बनाने वाले महत्वपूर्ण जो कारक है उसमें इसको भी साथ में लिया जाता है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना कीटाणुओं को फैलने से रोकता है। खाना खाने से पहले और बाद में भी हाथ हमें अवश्य धोना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर से आए हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए, और हम बाहर के फल और सब्जियां लेकर आते हैं तो उन्हें भी हमें पहले पानी से धोना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि गुनगुने पानी में नमक डाल के और सब्जियां या फल है तो आप उसमें थोड़ी देर उसको रखिए, क्योंकि आजकल केमिकल और रासायनिक जो उर्वरक है उनका जमाना है। तो हम जो फल और सब्जियाँ लेकर आते हैं या जो अनाज लेकर आते हैं 100% उसके ऊपर कई तरह के कीटाणु होते ही हैं, रासायनिक उर्वरक भी होते हैं, तो उन्हें धोने के बाद ही खाना चाहिए। और रोजाना स्नान करने से त्वचा भी साफ रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है, और हमेशा साफ और सूखे कपड़े भी हमें पहनने चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी हर 4 से 6 घंटे में हमें पैर को बदलना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सभी संक्रमण से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। बासी और खुला हुआ या दूषित जो भोजन है वो खाने से बचना चाहिए, और घर और परिवेश को भी स्वच्छ रखने से मच्छर मक्खियाँ पनप नहीं पाते, जिससे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों का भी खतरा कम होता है। स्वच्छ जल और उसी की स्वच्छता से हैजा, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसी गंभीर बीमारियों को भी रोका जा सकता है। और स्वच्छ वातावरण से न केवल शारीरिक रोगों को दूर रखने में मदद मिलती है, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है या मेंटली सेटिस्फिकेशन हमें मिलता है, क्योंकि हमें अपने घर को अगर साफ सुथरा देखते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है। हर चीज़ गर्मी से जमी हुई है, फर्श जो है गंदा नहीं है, किचन साफ है, बर्तन साफ है, गर्मी से जमाए हुए हैं तो, और हम खुद भी अगर साफ है, बच्चे भी साफ स्वच्छ है, नियमित से नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अन्य बाहर नहीं जाते अगर आते हैं तो हाथ धोते हैं, तो ये खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी बातें बहुत काम की है। WHO द्वारा भी स्वच्छता के मानवाधिकार और इसके वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव को रेखांकित किया गया है, और स्वच्छता अपनाना एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र की दिशा में उठाया गया पहला कदम है।

गाने के साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे स्वच्छता की। स्वच्छता हमारे स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य का आधार है। यह न केवल हानिकारक बीमारियों और संक्रमणों को दूर रखती है बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। स्वच्छ परिवेश सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नियमित रूप से हाथ धोना और आसपास की सफाई रखने से बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी पनप नहीं पाते हैं और ये डायरिया, हैजा और त्वचा संबंधी रोगों के खतरे को कम करते हैं। एक साफ और व्यवस्थित वातावरण सचिव तनाव और चिंता को भी कम करता है। इससे मन शांत रहता है और काम में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। सही अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल और मिट्टी को भी दूषित होने से बचाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता आपको तरोताजा महसूस कराती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और

सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है शिक्षा, बल्कि यह देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप भी अपने आसपास स्वच्छता अभियानों से जुड़ सकती है और उनके कार्यों की जानकारी भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो स्वच्छता को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आप अपना योगदान दीजिए।

कह ही सकती हो, आज हमने साफ सफाई और स्वच्छता की बातें की, तो क्यों ना हम अपने घर की तरफ भी थोड़ा सा रुख करें। और घरों की सफाई तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन कई बार हम घरों में देखते हैं

कभी किसी वस्तु के पीछे, टीवी के पीछे, फ्रिज के पीछे जाले जम जाते हैं। तो घर से मकड़ी के जाले साफ करना भी बहुत जरूरी है, उसको वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी गलत माना गया है। तो जाले साफ करने के लिए एक लंबा डंडा या झाड़ू कीजिए आप, और उसके आगे पुराना मोजा या सूती कपड़ा बांध दीजिए, उसे हल्का गीला कीजिए और छत के कोनों, पंखों, दीवारों पर ऊपर से नीचे की तरफ घुमाइए। इससे जाले और धूल बिना इधर उधर उड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। जाला अगर हमें साफ करना है तो केवल सूखे झाड़ू से जाले साफ करने पर धूल मिट्टी उड़ती है, हम देखते हमारी आंखों में भी दिख जाती है अगर ऊपर जाले है तो झाड़ू लगने पर जब हम पुराना कपड़ा बांधते हैं तो उसे गीला करना चाहिए, ताकि हल्का गीला कीजिए ताकि सारा जो जाला है और धूल है वो उस पर चिपक जाएगा। और हमेशा घर की छत और ऊपरी कोनों से ऊपर से नीचे की तरफ हमें सफाई करनी चाहिए, और उसके बाद में दीवारें हैं, खिड़कियाँ हैं, और अंत में फर्श साफ करना चाहिए। जाले हटाते समय पंखे या किसी फर्नीचर पर जाला न गिरे, इसके लिए सफाई करने से पहले नीचे के सामान को किसी चादर या पुराने कपड़े से ढक दीजिए। एक चीज और है, हमने देखा है कि हम जाले साफ करते रहते हैं लेकिन मकड़ियाँ दोबारा जाला बना लेती है, तो इसके लिए पानी और सफेद सिरके को बराबर मात्रा में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए और इसे कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर जहाँ पर जाले बनते हैं वहाँ पर छिड़कीजिए, और एक बाल्टी पानी में 2-3 चम्मच नमक मिलाइए और उसे कोनों में स्प्रे कीजिए। इससे मकड़ियाँ उस जगह पर दोबारा जाला नहीं बनाएंगी। और मकड़ियाँ जो होती है वो खट्टे फल और पुदीने की गंध बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो पानी में इन तेलों की कुछ बूंदें मिलाकर हम कोनों में स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आप भी जालों और मकड़ियों की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोजाना सफाई कीजिए और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैंने कहा कि घर के जाले जो है वो तो हर 15 से 30 दिन में साफ करने बहुत ज़रूरी है, और मौसम बदलने पर, त्योहारों से पहले या जब भी हमें कोनों और सतहों पर मकड़ी के जाले दिखाई दे तो उसे तुरंत मच्छर या झाड़ू की मदद से साफ कर देना चाहिए, और जाले हमेशा सुबह के समय साफ करने चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि धूल धूप निकलती है ना, तो घर के कोने अच्छी तरह से दिखाई भी देते हैं और धूल के कण भी आसानी से साफ हो जाते हैं। वैसे वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भी हम जाने तो गुरुवार और रविवार के दिन जाले साफ नहीं करने चाहिए, बुधवार और शनिवार जो है वो जाले हटाने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो आप भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने घर से जालों को हटा सकते हैं और सफाई कर सकते हैं।

प्यारी सखियों, बारिश का मौसम है और इस बारिश में हमें जो ना कैच रेन अभियान से और जल संख्या का संकल्प लेना है, क्योंकि जल है तो हम हैं। इसके लिए हमें हर घर, सोसाइटी, वर्क प्लेस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनानी चाहिए। और पावड़ियाँ हैं जो प्राचीन हमारी कुएँ हैं या पारंपरिक जल स्रोत है, उनको संवारना चाहिए, उनको इस्तेमाल के लायक बनाना चाहिए। मानसून के जल का ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना चाहिए कि आसपास के जो तालाब जलाशय है उनसे गाद निकालकर जल धारण क्षमता भी हम बढ़ा सकते हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं और सही जगह पर रिचार्ज किट सॉफ्ट बनवा कर अनुपयोगी जो बोरवेल है उनको ठीक करा कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में भी हमारा की जा सकती है, क्योंकि जल के बिना तो हमारा जीवन जो है हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो कैसा रेन जो अभियान है, इसके तहत बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें मिलकर बचाना है। और वर्षा का जो पानी है उसकी जब हम बूंद बूंद बचाएंगे तभी हमें जल की वास्तविक जो कीमत है उसका पता चलेगा।

प्यारी सखियों, अब घड़ी ने इशारा कर दिया है आपसे विदा होने का, लेकिन एक वादा, एक इरादा कि हम जल्द मिलेंगे, ढेरों बातें करेंगे रंगीन खूबसूरत नगमों के साथ में। तब तक हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए और आबाद रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि

0: ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

0: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन देका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक है।

0: हुआ नमस्कार।
1: FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

झुकती है न झुकती है किसी की हाथ, सांस चढ़ती है न रुकती है किसी की।

0: नहीं खुद से भी खफा लगती हूँ समय शाम।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साहिल ध्यानवी की बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, उपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

नजर में डालो जारो और बहारो।

0: तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है।
1: यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जा
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकवी।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी की कलम से लिखा है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह।

hijo

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज ही हसरत जयपुरी की बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ से हम है राजकुमार। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ से हम है राजकुमार।

यहाँ से हम राजकुमारी आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम राजकुमार होए होए जाने वाले।

0: हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। दिन में लेकर अरमां भरा दिल ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो फरार यहाँ के हम है राजकुमार। जाने वाले से जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। होए होए जाने वाले
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
0: एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो नाज़नी, वो तुम्ही हो महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो नाज़नी, वो तुम्ही हो महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। ओए होए एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

अदा झूमती कयामत है, खूबसूरत बला है आफत है, पास रह कर भी दूर रहती हो, दिल को चलना पुरानी आदत है, पास रह कर भी दूर रहती हो, दिल को चलना पुरानी आदत है। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, वो तुम्ही हो नाज़नी, वो तुम्ही हो महजबी, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, ओए होए, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

तो आंखों से कत्ल करती हो, अपना इल्जाम हम पे धरती हो, सारी दुनिया को मार डाला है, बात पूछो तो बस्म करती हो, सारी दुनिया को मार डाला है, बात पूछो तो बस्म करती हो। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, वो तुम ही हो ओ नाज़नी, वो तुम ही हो ओ महजबी, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल

0: सांवला रंग सबको पाया है, मेरा दिल भी तुम्हीं पे आया है। मेरा मरना भी कर दिया मुश्किल, प्यार करके मुझे सताया है। मेरा मरना भी कर दिया मुश्किल, प्यार करके मुझे सताया है। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो नंदनी, वो तुम्ही हो महजब। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: frente à reguinha.
1: Mante a reguinha.
0: Mante a reguinha.
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजे, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजे। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
5: कार्यक्रम मन चाहेगी,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ सूर्यकांत सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असद जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

0: को आए शिकार हो।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मनचाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचनगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपकी पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी दो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी दो मैं 10 नंबरी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ

एक नंबर का हाथ दिखाया जब कहके जय काली, अरे एक नंबर का हाथ दिखाया जब कहके जय काली। कितने ही सेठों की भारी जेब हो गई खाली, दो नंबर है और निराला, देखो और खुल जाए ताला, उड़के पॉकेट में आ जाए हरे नोट भी भरी ये दुनिया।

नंबर तीन का चमत्कार देखो जब फेंकू पत्ता। अरे नंबर तीन का चमत्कार देखो जब फेंकू पत्ता।

0: पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन मैं दुखियों का साथी, पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन मैं दुखियों का साथी। छठा देश के गद्दारों से छीन लूं घर की बाती, नंबर साथ करे जो दंगा, एक हाथ में कर दू चंगा, लंगड़ी टंगड़ी छुरी कटारी सब रह जाए हरी ये दुनिया।
1: एक नंबरी
0: ये दुनिया
1: एक नंबरी।

ये है कि मैं प्यार से मिलता सबसे, अरे कला आठवीं ये है कि मैं प्यार से मिलता सबसे, प्यार की खातिर इंसान क्या है लड़ जाऊं मैं रब से, नवा जो मुझसे मिले हसीना, नौ दिन तक ना रुके पसीना, और नंबर दस दस दस और नंबर दस दस दस लिखा है ये तो हर थाने में, सिफत है क्या क्या दीवाने में, जितनी उंगलियां इन हाथों में उतनी

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं। इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्ट कार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सके। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिरी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

रखेंगे मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं बना दिया साइलेंट लवर वी आर साइलेंट लवर।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: आराम।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सीजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुपिंदर सिंह की आवाज के साथ ही आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

I tell you, Diluka Madhulam, I love you, I love you, I love you.

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन सी रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ तो चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से फोन का सहारा लिया जाए।
3: अरे बकुलावलिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
1: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती हैं
1: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
2: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। जल्दी हाथों पकड़ लिया, चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सीने नहीं जा रहा था, मैं तो यही देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार भूलने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
6: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
6: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
6: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साफ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चले।

0: महाराज अनर्थ हो गया।
1: महाराज क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वेलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुन। मैं नाग को बाल करके नाग मुद्रा लेके
2: बहुत जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने।
1: बस अब देर न करो,
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए। वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही है।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसिंह को सब समझा दो।
0: अभी समझाए थे तुम महाराज, आप वहां पहुंचिए।
3: जयसिंह इधर आओ।
4: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
5: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजी आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
5: आज तो कुछ कम है देव। अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
6: मुझे बताइए मुझे बाप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
7: जैसी देख किया क्या?
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलू। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखे आप मुझे पर उसके दांतों के चिन्ह।
5: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को। अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
0: मैं आपका पास सका हूँ, सुना तो मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वह आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
7: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज ये गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
7: देखती कैसी आ गया,
0: कौन जाने मैं जीव या मरू। श्रवण करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक वो क्षमा
5: कीजिए। नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
7: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलखत विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
5: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
7: देवी की जैसे लाग्या। आइए आइए
1: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर पर मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना। और फिर यथाशीघ्र उन्हें कुटमार्ग से प्रमदवन में पहुंचा दे, समझे?

0: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आई?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह, यहाँ कितना अंधेरा है,
1: काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तुम्हें नहीं मालूम,
0: ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए।
1: देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और
0: ठीक है मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गुरु, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं ला
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र के हमें लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना क्या था, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में जीव भर पर महाराज का रूप देख कर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी,
0: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसके और महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है।
0: अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ। क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है। तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी जी जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र क्या बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेद नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकलावल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला वाले का, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। उसे भगा ले, चल चले। महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह को द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे?
1: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांस नहीं काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हाल चाल जान लें।
1: और दी आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना दिया जाए।
1: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चलो समुद्र देखती हूँ।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रही हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामी ने, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रख रहा है मालविका का।
2: मालविका तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये कृतघ्न ब्राह्मण, ठहरिए आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाए। अब यहाँ से मैं इस प्रकोप ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए मुझे, आप आगे ना महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: उधर ना जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केत की ये कांटों से सांप के दांतों का झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की

0: पूरी हो गई?
1: देवी इरावती,
2: सच्ची बकुला वालिका, ये कैसा है?
0: बकुला वालिका, तुझे बधाई है। दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका, भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे?
3: जो आ गया।
4: ओहो, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तुम मेरे से छूटा हुआ कबूतर
1: इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
0: देवी, क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
3: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया आइए इधर कान में चलिए।
2: और सिक्की बकुला वालिका, तुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा, तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों, प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
5: यदि मन नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
0: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
6: सुनो राज प्रासाद वासियों, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
7: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के कचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हेड स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च गोड़ के कलाकार

0: विद्यापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मानुपम में बलावे
0: चंद्र कुलभूषण विद्यापति महाराज अग्निवीर
1: ब्रह्मानुपम में पधार।

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहरे अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव, विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
0: आपके मन की साथ पूरी हो आर्य पुत्र। फूलों से लदे सुनहरे अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गई है, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
2: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
2: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
3: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
3: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आखिर थी देखो, इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी?
3: अरे राज

0: आप यहाँ?
1: जय हो
0: राजकुमारी।
1: जय हो।
0: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
2: मालविका राजकुमारी?
0: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
2: कैसे?
0: सुनिए महाराज, आपके सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव जी को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी।
3: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊ का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
2: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
0: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सिंह को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
2: फिर क्या हुआ?
0: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
1: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
2: भगवती आप?
0: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
1: हाँ वही है।
0: प्रणाम भगवती, कल्याण हो।
2: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
1: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
2: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
1: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बिगड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
3: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
2: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक थे।
1: भैया आप ही तो
2: मेरे जीते जी। राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
3: अरे शुक्र हुआ, क्या हम लोग इतना टूट क्यों गए?
4: जानकारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
3: कोई हुआ ना जिसका भय था? ठाकुर ने
4: दिया है। जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: जाने की करके घायल हो गए हैं, मर रहे हैं, हाथ जा रहे हैं। अरे भैया लघु मंगान होकर घर आ रहे हैं और डॉक्टर ने भैया को अकेले
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिन बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
1: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही।
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
1: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आदिवासी का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, ये भी बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
1: ओह, मेरा जीव इसे सुनने को छिटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, हलतह हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज महारानी, पुत्र के विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला। भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
1: जैसे रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, कोई वेट में ना डाले।
4: देवी की चर्ची हत्या।
1: मालविका इधर आओ, प्रस्तुत होती। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। आप लजा क्या रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी,
3: महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
5: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा।
2: जो 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी की, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पशुपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं, बिकॉज

0: हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म। इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराए तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतियां क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है भी, करो तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज तक उसकी रीलें चलती हैं।
0: हाँ।
1: और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर।
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसे था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने

0: रही थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे। और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट ये। बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं। हाँ, जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक। हाँ, वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उसकी एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश। क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट।
1: वहां से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट।
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही, बहुत ही, और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स।
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो, अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे। राइट। सब लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं। और वो अपनी पूरी छाप छोड़ दे, वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है, अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म होगा। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो, वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब

0: में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है.
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है. और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की. कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं. बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही. बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी. बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था तो वो उन्होंने देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़. एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं. तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था. और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया. खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे. और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था. हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं. पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी. तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए.
1: अरे अरे.
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए. वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए. क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते. तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ. तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है. हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है.
1: बिल्कुल.
0: ये लोग भूल जाते हैं. ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो. लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं.
1: बिल्कुल. यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: अब वो उनके पंच आते,
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर

0: पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि फिर कुछ बोल नहीं पा रही है।
1: ओके, वो जवाब बाद में,
0: हाँ वो बाद में, वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
0: फैमिली
1: चल रही
0: थी। फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
1: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती
0: वो यूट्यूब पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: दिखाऊंगी
0: ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीग थी वो,
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो इतनी ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी, तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था,
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है,
1: हाँ।
0: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।
2: तेरी आंखों का जादू, मिस लवा लवा, तेरी बातों का जादू।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां इसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निरो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमिजिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर हैं जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
0: बिल्कुल.
1: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
0: जी.
1: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
0: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi ch

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है।
1: अभी आप विविध भारती की कार्यक्रम हमारे मुंबई के अंदर से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवानी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक कहावत तो हम सब ने सुनी है, करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कविवर वृंद का अत्यंत प्रेरणादायक दोहा है ये। इसका अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान और कुशल बन जाता है। ये दोहा हमें सिखाता है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रतिभा नहीं बल्कि नियमित परिश्रम और सतत अभ्यास है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास का एक विशेष महत्व है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, खेल, संगीत, कला विज्ञान या फिर कोई भी दूसरा काम। निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। साथियों, पूरा दोहा जो है वो इस प्रकार है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत चावत ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि ने रस्सी और पत्थर का सुंदर उदाहरण दिया है। जब एक रस्सी बार बार कुएं से पानी निकालने के लिए पत्थर पर रगड़ खाती है तो कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं।

और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहे तो वो अपनी कमियों को दूर करके ज्ञान कौशल और सफलता प्राप्त कर सकता है। साथियों, अभ्यास मनुष्य के जीवन का आधार है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या कुशल नहीं होता, वो अपने निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन से सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी अगर प्रतिदिन पढ़ाई करे तो कठिन विषय भी सरल लगने लगते हैं। खिलाड़ी नियमित अभ्यास से अपनी शारीरिक क्षमता और खेल को कौशल बनाते हैं। संगीतकार और कलाकार वर्षों की साधना के बाद ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, अभ्यास केवल ज्ञान बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, धैर्य और एकाग्रता भी विकसित करता है। निरंतर अभ्यास करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने का साहस रखता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका क्या है। साथियों, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास का सबसे अधिक महत्व होता है। केवल परीक्षा के समय पढ़ने से अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए जा सकते। नियमित अध्ययन, लिखने का अभ्यास, प्रश्न हल करना और समय समय पर उसकी पुनरावृत्ति करना ही सफलता की कुंजी है। गणित, विज्ञान और भाषाओं जैसे विषयों में लगातार अभ्यास से समझ और दक्षता दोनों बढ़ती है। अभ्यास से स्मरण शक्ति मजबूत होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, खेल और अन्य क्षेत्रों में भी अभ्यास करने से हम अपने आप को निखार सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आवारापन से गीत। आवाज थी सुजैन डिमेलो की। गीत के बोल लिखे थे सईद क्वाड्री ने और संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम निरंतर अभ्यास करके अपने किसी भी कौशल को निखार सकते हैं। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी कि विद्यार्थियों के जीवन में निरंतर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को लेकर हो या अपने किसी खेल को लेकर, क्योंकि दोस्तों खेलों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को कई घंटों तक प्रैक्टिस करनी होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन या फिर एथलेटिक जैसे किसी भी खेल में बिना अभ्यास के उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार नृत्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और लेखन जैसे क्षेत्रों में भी निरंतर अभ्यास व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। आज के समय में विज्ञान, तकनीक और कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में भी नियमित रूप से सीखना और अभ्यास करना आवश्यक है। बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को अद्यतन रखने के लिए निरंतर अभ्यास और सीखने की भावना का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो दोहे की हम बात कर रहे हैं, ये दोहा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है। सबसे पहली सीख ये है कि असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि किसी प्रयास में हमें सफलता नहीं मिलती है तो उसे सीख मानकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। और दूसरी सीख ये है कि धैर्य और निरंतरता हर सफलता की नींव है। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि कोई भी लक्ष्य कठिन अवश्य हो सकता है लेकिन असंभव नहीं, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, करत करत अभ्यास के चरमति हो सुजान, ये केवल एक दोहा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक प्रेरणादायक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति अपनी

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और कविता की आवाज़ में गीत, उनका नाम था सालबाज। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। साथियों, भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, अनियमित वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई के कारण जल स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। साथियों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण करना और जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास करना है। इस अभियान के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है ताकि वर्षा जल का संचयन बढ़े, भूजल स्तर में सुधार हो और पर्यावरण संतुलित बना रहे। तो साथियों, आइए बात करते हैं इसी अभियान के बारे में। कैच द रेन अभियान का संदेश है, बारिश का पानी जहां गिरे, जब गिरे, उसे वहीं संचित करें। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के माध्यम से तालाबों, कुओं, झीलों, नदियों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्निर्माण भी किया जाता है। साथियों, जल ग्रहण क्षेत्र वो भूभाग होता है जहां वर्षा का पानी एकत्र होकर किसी नदी, तालाब, झील या जलाशय में पहुंचता है। यदि इन क्षेत्रों का उचित संरक्षण किया जाए तो वर्षा का अधिकतर जल भूमि में समा जाता है और भूजल स्तर बढ़ता है। लेकिन अगर जल ग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की कमी हो तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है और वर्षा का पानी बहकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। साथियों, वृक्ष प्रकृति के अमूल्य उपहार। ये वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है, वर्षा का पानी धीरे धीरे भूमि के भीतर समा जाता है और भूजल का स्तर बढ़ता है। वृक्ष वातावरण में नमी बनाए रखते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं और इससे जैव विविधता का संरक्षण भी होता है। साथियों, कैच द रेन अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जल ग्रहण क्षेत्रों में हजारों पौधे लगाए गए। स्थानीय प्रशासन, वन विभाग, ग्राम पंचायतें, विद्यालय, महाविद्यालय और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। पौधारोपण के साथ साथ वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, तालाबों की सफाई, चेक डैम निर्माण और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लोगों को पौधों की देखभाल और संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया ताकि लगाए गए पौधे बड़े होकर पर्यावरण को लाभ पहुंचा सके। साथियों,

हम सभी जानते हैं कि वृक्षों से हमें कई प्रकार के लाभ हैं और जल ग्रहण क्षेत्रों में अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो इससे भी हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि वर्षा जल का संरक्षण बढ़ता है, भूजल स्तर में सुधार होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक समस्याओं का समाधान होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और इसके अतिरिक्त पक्षियों और वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास मिलता है। जैव विविधता का संरक्षण होता है और हर क्षेत्र बढ़ने से जलवायु संतुलित रहती है और तापमान में भी कमी आती है। साथियों, किसी भी पर्यावरणीय अभियान की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर करती है, इसीलिए कैच द रेन अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, किसानों, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विद्यालयों में रैलियां, निबंध प्रतियोगिताएं, जागरूकता कार्यक्रम और वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों ने अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया और ये जनभागीदारी अभियान की सबसे बड़ी सफलता रही है। दोस्तों, हालांकि वृक्षारोपण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है लगाए गए पौधों का संरक्षण। कई बार पौधों को पर्याप्त पानी, सुरक्षा और देखभाल नहीं मिल पाता और जिस कारण से वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो जो भी पौधे लगाए उनकी नियमित देखभाल भी करे। वर्षा जल संचयन को प्रत्येक भवन, विद्यालय और सार्वजनिक संस्थान में अनिवार्य किया जाए। साथ ही लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति निरंतर जागरूक किया जाना भी आवश्यक है। तो साथियों, कैच द रेन अभियान जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि, मिट्टी का संरक्षण और हरित पर्यावरण का विकास संभव है। ये अभियान हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और जल बचाने का संदेश देता है। अगर प्रत्येक नागरिक वर्षा जल संरक्षण और वृक्षारोपण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले तो भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी और जल संरक्षण के प्रत्येक प्रयास में सक्रिय भागीदारी निभानी, क्योंकि साथियों यही सतत विकास, सुरक्षित पर्यावरण और समृद्ध भविष्य की कुंजी है। तो दोस्तों, आइए आपको फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था हम तुम्हारे हैं सनम। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। साथियों, भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए भूमि और आवास उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। लंबे समय तक ग्रामीण आबादी के पास अपने आवासीय भूखंडों का स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण भूमि संबंधी विवाद, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों की भूमि का ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर प्रत्येक पात्र संपत्ति मालिक को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड में भूमि के स्वामित्व का आधिकारिक विवरण दर्ज होता है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण प्राप्त होता है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें उद्देश्यों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट और प्रमाणित करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सटीक डिजिटल सर्वेक्षण करना और संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे भूमि संबंधी विवादों को कम करना, साथ ही संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण प्राप्त करने में भी सहायता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को सटीक भूमि अभिलेख उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग देना और डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांव की आबादी वाले क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक घर और भूखंड की सीमाओं का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाता है और इसके बाद संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद आपत्तियों का निवारण करने के पश्चात संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अत्यंत सटीक होती है। साथियों, इस योजना के लाभ क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिल जाता है, जिससे भूमि विवादों में कमी आती है। संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, जिससे ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का मूल्यांकन भी अधिक पारदर्शी ढंग से किया जा सकता है। ये योजना ग्राम पंचायतों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध होने से कर निर्धारण, विकास योजनाओं की तैयारी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो पाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में भी गति मिलती है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पष्ट भूमि अभिलेख होने से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचना आसान हो जाता है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भूमि संबंधी विवादों में कमी आने से सामाजिक सौहार्द भी बढ़ता है और न्यायालयों पर मामलों का बोझ भी कम होता है। साथियों, ये योजना डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाती है। ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मैपिंग और ऑनलाइन भूमि अभिलेखों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनता है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से सरकारी कार्यों में गति, सटीकता और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। भविष्य में ये डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण शासन को और अधिक मजबूत बनाएगी। साथियों, यद्यपि ये योजना अत्यंत लाभकारी है, लेकिन फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। कई स्थानों पर भू सीमाओं को लेकर पुराने विवाद मौजूद हैं।

कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का अभाव और लोगों में जागरूकता की कमी भी देखी जाती है। इसके अलावा सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करना और अभिलेखों का नियमित अद्यतन करना भी आवश्यक है। तो साथियों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल है। ये योजना आधुनिक तकनीक के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करती है और भूमि संबंधी विवादों को कम करने में सहायता करती है। इसके साथ ही ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय समावेशन और समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करती है। यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए और जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए तो ये ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वास्तव में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर, सशक्त और डिजिटल ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो साथियों, अभी वक्त है फिर से मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

अरे दिल तोड़ने की बेशक है आदत तेरी, पर ये दिल टूट जाने की चीज नहीं है। तुझको दीवाना अपना ना कर दूं अगर, तू भी कहना ये शख्स कोई चीज नहीं है।

0: तोते से बोली मैं ना अरे कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना।
1: अरे दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हद कर दी आपने से गीत आवाज थी अनुराधा पौडवाल, उदित नयन, सुदेश और विनोद की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था आनंद राज आनंद का। साथियों, अवकाश यानी छुट्टी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। निरंतर कार्य करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं और इसीलिए विश्राम और मनोरंजन के लिए आवश्यक होता है एक अवकाश। किंतु अवकाश का केवल समय बिताना नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने खाली समय का सही उपयोग करता है वो जीवन में अधिक सफल, आत्मविश्वासी और रचनात्मक बनता है और इसीलिए हमें अवकाश को उपयोगी बनाना चाहिए। साथियों, अवकाश हमें मानसिक और शारीरिक ताजगी प्रदान करता है और इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई के साथ साथ उचित अवकाश लें तो उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अवकाश हमें अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने, नई बातें सीखने और अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर भी देता है। तो साथियों, आइए चर्चा करते हैं कि अवकाश का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। साथियों, अवकाश का सदुपयोग कई प्रकार से हम कर सकते हैं। विद्यार्थी समय का उपयोग अच्छी पुस्तकें पढ़ने, समाचार पत्रों और प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन करने में कर सकते हैं। साथ ही उन्हें योग, व्यायाम, खेलकूद और भ्रमण जैसी गतिविधियां भी अपनानी चाहिए क्योंकि इससे उनका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। संगीत, चित्रकला, नृत्य, लेखन, हस्तकला, बागवानी या फिर कंप्यूटर जैसे नए कौशल सीखना भी अवकाश का उत्कृष्ट उपयोग है। साथियों, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन

अलेक्सा के माध्यम से नई भाषाएं, कंप्यूटर कौशल, प्रोग्रामिंग, संचार कला और दूसरी कई उपयोगी चीजें सीखी जा सकती है और इससे भविष्य के लिए हमारे सामने कई नई संभावनाएं विकसित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम अवकाश का उपयोग समाज सेवा में भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसे कार्य समाज के साथ साथ स्वयं के व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं। ऐसे कार्यों से सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। कुछ लोग अपना अवकाश केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम या फिर टीवी देखने में व्यर्थ कर देते हैं। इससे समय की बर्बादी तो होती है, स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक स्क्रीन का समय आंखों, मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए हमें मनोरंजन और उपयोगी कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। साथियों, विद्यार्थी जीवन में अवकाश का सही उपयोग भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियमित अध्ययन के साथ अवकाश में पुनरावृत्ति, सामान्य ज्ञान बढ़ाना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, पुस्तकालय जाना और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साथ ही उनमें अनुशासन और समय प्रबंधन की आदत भी विकसित होती है। तो साथियों, अवकाश जीवन का एक अमूल्य उपहार है। इसका उद्देश्य केवल विश्राम करना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि हम अपने खाली समय का सदुपयोग करें तो ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और कौशल चारों क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रत्येक अवकाश को उपयोगी, रचनात्मक और प्रेरणादायक कार्यों में लगाएंगे और यही हमारे उज्ज्वल भविष्य और सफल जीवन का आधार बनेगा। तो साथियों, अभी वक्त तो चला है फिर से मनोरंजन का। आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है पहली बार,

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था इश्क विश्क। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, हमारे पर्यावरण पर। जी हाँ साथियों, पर्यावरण वो प्राकृतिक परिवेश है जो हमें जीवन प्रदान करता है। इसमें वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वनस्पति और सभी जीव जंतु शामिल हैं। मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और उपजाऊ भूमि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण निरंतर प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह हमें शुद्ध हवा, पीने योग्य जल, भोजन, औषधियां और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जीवन संभव होता है। नदियाँ, झीलें और वर्षा जल कृषि और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण मानव, पशु पक्षियों और वनस्पतियों के संतुलित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आज पर्यावरण कई कारणों से प्रदूषित हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण, नदियों में छोड़ा जाने वाला गंदा पानी, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग और बढ़ती जनसंख्या इसके प्रमुख कारण हैं। और इसके अलावा ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग भी जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बन रहा है। साथियों, इस प्रदूषण का प्रभाव मानव जीवन, पशु पक्षियों और प्रकृति पर स्पष्ट दिखाई देता है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य जल की कमी हो रही है और अनेक जल जनित बीमारियां भी फैल रही हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता नष्ट हो रही है और वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। इसीलिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी सबसे प्रभावी उपाय है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को अपनाना होगा ताकि जल का अनावश्यक उपयोग हम रोक सकें। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। कचरे का पृथक्करण यानी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने जैसी आदतों को अपनाकर वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सशक्त दूत बन सकते हैं। वे अपने विद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें और वृक्षारोपण करें, जल और बिजली की बचत करें, तो ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि साथियों, पर्यावरण हमारी अमूल्य धरोहर है और इसका संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। यदि हम आज से ही प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, उसे निभाएं और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल बचाएं और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें, तो एक स्वच्छ, स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का निर्माण करना हमारे लिए असंभव नहीं है। तो साथियों, हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाज़त।

अभी युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। यदि आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम के पश्चात रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा।

आकाशवाणी जैसलमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शाम 6:05 पर सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का निर्देशन करेंगे श्री रामजीलाल मीणा और वाचन स्वर होंगे शरद शर्मा की।

सवा 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM MHz पर। ये प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्ट महिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: अरुण पराग जलज हरि नीर के ससि भूष अहि लोभ अमीर के
1: बहुरी

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का अंक। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। अब से थोड़ी देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात राजस्थानी में।
1: शिक्षा कीजिए।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबूराज में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमोर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमोर्ज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
2: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद।
0: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालताल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ की राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुकाछिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभागों के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
3: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर सेवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। दो पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाई माधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोडी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाया जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहले आजरी खास खबर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस LNG री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव अर्चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VVG रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रुपया री मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथे VVG रामजी योजनावां रे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कहो कि आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करयो जा सके। वणा कहो कि मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो वकत लाग्यो हो, जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान कहो के VVG राम जी योजना रे तहत मजदूरी दरामाए औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी करी जी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस LNG री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होर्मुज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करयो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना माए कहो है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करयो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहां खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिनके तहत सरकार ने देश माए उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG रे आवंटन माए प्राथमिकता देने री इजाजत ही। होर्मुज जल डमरू मध्य सु LNG री खेप माए रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च माए आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करयो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरोड रे मुंडावर माए 24 करोड़ रुपया रे विकास कामारो उद्घाटन करयो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करयो। इन मौके माथे वणा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियों रो ओ सपनो पूरो करयो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कहो के इन सु प्रदेश रे सूखा प्रभावित खेतरा ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री बठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम माए भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापन माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रे प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एडी विषय वस्तु ने बधाओ देवन और इनरी पहुंच ने सोरो बनावन वाला सगला विज्ञापन और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सु 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांग्यो है। सरकार इन बात री समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशारो अनुपालन करयो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूना रे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इनसू पहल्या मंत्रालय वहां रिपोर्टारो संज्ञान लियो हो, जिका माए कयो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बधावो देवे है और अहलकारा ने मेटासू जवाब मांगने रा हुकुम जारी करया है। ए खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहा हो। सिरोही जिलेरा आबू राजरा ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय री कानिसू दो दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो व्यो। समापन सत्र में संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सु कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कहो के ए शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण में महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करेला। श्री मेघवाल कहो के शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करियो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
2: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिले।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सु आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखी जा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगा रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जानो है। मीडिया सु बात करता थका केंद्रीय मंत्री कहो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभा रो भी जिक्र करियो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायात री समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ खेतर माए आज सुमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जनारी मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जना गंभीर रूप से घायल वे गया। हादसा रे पाछे हाईवे माथे कुछ वक्त खातिर यातायात प्रभावित रियो। वो हादसों सूरतगढ़ सदर थाना खेतर माए 22 LGW रे कन्वियो गंभीर घायला ने तुरंत सूरतगढ़ रे राजकीय सफाखाना पहुंचायो गयो। और अब मौसम प्रदेश माए जठे एक कानी कई जिला मॉनसून री बिरखा सु तर हो रिया है, वठी ने दूजी कानी कई जिला बरसात री उडीक कर रिया है। राजधानी जयपुर माए सुमारे सु चाल री बादलारी लुका छुपी रे पाछे दोपहरा माए कई जगावा तेज और कठी घटी हल्की बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए सुमारे झमाझम बरसात हुई, वठी ने हनुमानगढ़ माए भी जिला मुख्यालय समेत भादरा संगरिया और पल्लू खेतर माए तेज बिरखा दर्ज करी जी। पाली और आसे पासे रा खेतर माए चोखी बिरखा होने सु काश्तकार खरीफ फसल री बुआई री तैयारियां शुरू कर दी है। उदयपुर माए सिंजा हुई मूसलाधार बिरखा सु शहर रा कई इलाका माए पानी भर गयो। वठी ने बालोतरा और सिरोही जिला माए सुमारे सु उमस और गर्मी सु जनजीवन घणो प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य रा पूर्वी भागा माए आवता 5-6 दिना माए मॉनसून सक्रिय रहने और घनकर थोड़ा माथे हल्की सु मध्यम बिरखा और कठी कठी भारी बिरखा री आस है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान माए काले सु भारी बरसात री गतिविधियां माए और बढ़ोतरी हो सके है। आज लगे टके सगड़ा संभागा रा जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट है। भरतपुर रा विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए प्रवासी परिंदा ने देखने खातिर आ दिना घनी तादाद माए पंछी प्रेमियारो आणो जारी है। माणा खबर नवीस बतायो के पंछियां रा आकर्षक समूह सैलानिया ने रोमांचित कर रिया है।
3: केवला देव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर सेवाल छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: अमरनाथ यात्रा रा पहला 2 दिना माए 32,313 श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदर माए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुआ रो चौथो जत्थो आज सुमारे जमूरा भगवती नगर निवासू यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहन माए 6731 श्रद्धालु भीड़ा है। इन माए सू 4032 श्रद्धालु 139 वाहन माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जदके लगे टके 2000 श्रद्धालु 152 वाहन माए बालटाल मार्गरी तरफ सू जा रिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री कानीसू राखी जी लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश पर माए 2 पारियां माए हुई। परीक्षा रे सफल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन खातिर प्रशासन सगली तैयारियां करी ही। 2 पारियां माए राखी जी आ परीक्षा सुमारे 9:30 बजे सू दोपहर 12:30 बजे ताई और दूजी पारी माए दोपहर 3 बजे सू सिंजा 6 बजे ताई हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भारत में लीवर री बीमारी और टाइप 2 मधुमेह सो निपटने रे खातिर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने रो हिलो करियो है। नवी दिल्ली में लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क री तीजी वर्षगांठ में डॉक्टर सिंह कहो कि ए रोग अबे पहली री तुलना में कम उम्र रे लोग में भी देखा जा रहा है। वणा कहो कि देश री जेनेटिक बनावट पेट रे आसे पासे चर्बी री 32 समस्या और भारतीय री शारीरिक बनावट रे कारण लोगा माए मधुमेह फैटी लीवर और हृदय रोग रो खतरो बत्ती है। डॉक्टर सिंह कहो कि वैज्ञानिक तरक्की रे साथ है बड़े पैमाने माथे जन जागरूकता और व्यवहार माए बदलाव सु इन चुनौती रो निपटने रो निपटो जा सके है। और आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया की सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सू आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज माए विधि मंत्रालय री कानी सू 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। अर राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सू तरबतर आज घनकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचारारो ओ बुलेटिन अठाई पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
4: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

पालाकंडी टाइम बड़ी देर पर लोग इशू है। और भाई देखो, अब बात करता है बारिश है, लेकिन बारिश से पहले अपनों की एक कमरे भाई लोगों ने काफ़ी तैयारी कर ली उसे। और देखो, अब पहले भी कार्यक्रम बात कर चुका हूँ, आज युग की प्रतिस्पर्धा युग है, हर आदमी चाहे कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा या कम समय में अधिक पैसा कमाऊँ। तो काफ़ी लोग किए आजकल रासायनिक जो खाद है वो उपयोग थोड़ा ज़्यादा करें, लेकिन अगर जो आप रासायनिक खाद जगह जैविक खाद उपयोग करो तो उससे अपन का ही फायदा है। रासायनिक खाद उतनी जब कम मिला जितनी अपना आवश्यकता है। आज देखो विज्ञान काफ़ी तरक्की कर रही है, और अपने खेत में इस को मिट्टी यूरी जांच करा के पता कर चुका है कि अपने खेत में कितनी रासायनिक खाद आ सकता है। रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों अगर जो तुलना करो तो जैविक खाद अपन सस्ती पड़ी, उसके बाद वो अपन वास्ते फायदेमंद है। फायदेमंद ये है कि अपनी जमीन सुरक्षित, और बाद जो उन्होंने खेत में जो खाद डाले नहीं रासायनिक खाद अगर जे ना के मुंडे से उस शरीर में जाओ तो नुकसान, जैविक खाद में ऐसी है बन तो अपन फसल बेचन भी जा सुने तो जैविक खाद का पैसा अपना अधिक मिलता है वनस्पत रासायनिक खाद। तो अपन छो फिर फायदो है तो क्यों अपन रासायनिक खाद उपयोग करो, मिट्टी की जाँच करो, कुछ अपन ध्यान पड़ जाते कि अपने खेत वास्ते कई और कितनी रासायनिक खाद आ सकता है, उस हिसाब से आप खेत में अपन जुताई करो। दूसरी बात, अपो खेती बाड़ी में उन्नत किस्म का बीज का उपयोग करो, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। कभी कभी कि थोड़ा लालच करता है नुकसान करता है, लेकिन हमेशा जब बुआई करो बढ़िया उन्नत किस्म का बीज आया करें वो रही अपन को मिलना चाहिए। और साथ में किए जो आस पास में अगर जब पेड़ पौधा लगाओ तो उसकी अपन फायदो है, अपन पैया की रोकड़ा भी मिल जाए ना, पर खेत चौफे दिए जब तो मिल जाए। आज अपने की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, और देखो 2026 में की शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारिता। और सहकारिता देखो भले को यूँ है कि भाई जो 2026 थीम है जो शिक्षा स्वनिर्माण युवाओं में शक्ति, तो ये सुखी है कि जो अपना जो आत्मनिर्भरता है, स्वयं जिम्मेदारी है, लोकतंत्र समानता निष्पक्षता, तो जो सहकारी समिति है नहीं ये सदस्य ईमानदार पारदर्शी सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपन विशेष ध्यान रखना है और आगे सुना प्यारों से कपो लोकगीत है।

पालो कपड़े दिए लोग गीत सुने होगा और अपन देखो कार्यक्रम के बखे बोलो, लेकिन आप मैं चाहता हूँ एक बार वापिस कह दो कि भाई कैच द रेन मतलब बरसात है पानी ने पौनो संचय करने में हमें वो संचय ही है कि अपन घर है या फिर कोई भी वर्क प्लेस है जिस पर काम कराए तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है जिसके संबंध में बताया हो कि भाई टॉक में जाके सीधे पाइप डाल देना वो पानी फोन आके काम लेना है। और ये जो मानसून पानी है नहीं ये जितना ज़्यादा संचय कर सो उतना अपना फायदा है। तो ये साथ अपने भाई विशाल आगे राम राम सर।

ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

Hey!

হবেন মাউরি নাকি আরে নাগরি নাগরি তুমি মারবি আরে মাঠ ভাঙবি

कटने छत की बिजली कथ गोर नहीं तो जाज नहीं तेरे नैनो भाई गजली प्रेम गुलेला फेंक दिया तेरी फूट गई शिरकी साय पुकारो राजा नंद के आगल न्याव नहीं मथुरा नगरी।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम को निर्देशित कर रहे हैं श्री रामजी लाल मीणा और वाचन स्वर हैं शरद शर्मा के।
1: आज़ादी का अमृत महोत्सव।

0: श्रोताओं नमस्कार। और भारत का जो विकास हो रहा है उस विकास में किसान भी सहभागी बन सके, इसीलिए सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। और किसान सक्षम हैं और उनकी उत्पादन लागत कम हो और उनको अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और आज की हम विकास यात्रा में जो किसानों के लिए योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना सिंचाई के फसल हो नहीं सकती, और सिंचाई के संबंध में जो योजना है उसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं शरद शर्मा, मैं हूं श्यामवीर सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के साथ साथ खेती में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ साथ इसमें किसानों को सोलर पंप लगाना हो या बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना हो, इसके लिए भी सरकार इनको 90% तक की सब्सिडी या वित्तीय सहायता देती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि खेती करना तो उनका अपना व्यवसाय है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि आधारित रहा है, और इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अगर किसानों की स्थितियाँ मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसानों को लेकर सोचते हैं तो उनके जीवन को ऊपर उठाना भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि अन्नदाता से ही हमारी आपूर्ति होती है भोजन की। तो रोटी कपड़ा और मकान, इसमें अगर हम रोटी की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, तो वो किसानों से ही हमें मिलता है। तो किसानों के लिए सरकार हमेशा से बड़ी सजग रही है, और किसान सम्मान निधि योजना है, किसानों को वित्तीय सहायता देना है, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लाभार्थी वाले जो उनके काम आ सकते हैं, ऐसी योजनाओं को शुरू करना है। तो आज की विकास यात्रा में हम पीएम कुसुम योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये योजना एक प्रकार से किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब तक किसान जब खेती करता है तो उसमें खेती करने के दो तरीके होते हैं, एक पारंपरिक होता है और एक तकनीकी आधारित होता है। तो तकनीकी आधारित में तो हम ये देखेंगे कि अगर किसान ने बुआई कर दी है तो वह सोलर, अगर उसके पास ऊर्जा है, क्योंकि देखें हम गाँव में दूर दूर तक कई बार हमें ऊर्जा के स्रोत नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर अगर वो पंप चलाना चाहे तो उसके बाद जब बिजली नहीं होगी तो भला वो कैसे सिंचाई कर पाएगा। और गैर तकनीकी में तो हम देखते हैं कि वर्षा आधारित जो है या खड़िन आधारित जो कृषि कार्य होते हैं उसमें तो काम हो जाता है, लेकिन अगर ये तकनीक में अगर संयंत्र सौर ऊर्जा या बिजली व्यवस्था न हो तो किसान के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसानों को उनकी ही जमीन पर ऐसे तकनीकी संयंत्र जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक हो वो उपलब्ध कराए जाए, जिसमें लागत भी कम हो और भविष्य में ऊर्जा का वो पारंपरिक स्रोत बना रहे और उनकी आने वाले समय की जो भी आवश्यकता है बिजली की वो पूर्ति उससे होती रहे।
0: शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हमारे देश में आज भी ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर बारानी खेती होती है, और उसमें अपना जो पश्चिमी राजस्थान है ये भी है, तो बारिश पर आधारित जो खेती है उसमें उत्पादन की सुनिश्चितता नहीं होती है। यानी बारिश सही समय पर हो गई तो फसल हो जाएगी, लेकिन अगर बारिश सही समय पर नहीं हुई तो फसल होने की संभावना नहीं रहती और किसानों का नुकसान होता। अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसानों को इस संकट से बचाया जाए कि बारिश हो ना हो उनकी खेती प्रॉपर होती रहे। तो जो योजना है, अब ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक तो हमारी जो यूँ कहें कि डीजल पेट्रोल आधारित जो पेट्रोल पंप होते हैं, या यूँ कहें कि जो वाटर पंप होते हैं, कुएं से पानी निकालने की सुविधाएं होती हैं, ट्रैक्टर भी इससे चलाने होते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ पर यूँ कहें कि सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूँ कहें अच्छी उपलब्धता है, इसके कारण किसानों को सरकार जो सोलर लगाने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है कि आप सोलर के माध्यम से सिंचाई के साधन विकसित कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर समस्या यह है कि पानी अधिक गहराई पर है, और अधिक गहराई से पहले उसको ऊपर जो बड़े बड़े टांके बनते हैं उसमें स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर जो यूँ कहें कि बड़ी जो पावरफुल पंप होती है उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसमें यूँ कहें कि 5 किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर लगाए जाते हैं, और फिर उस जो टंकी होती है या यूँ कहें कि डिग्गी बनाते हैं उससे जब सिंचाई के लिए पानी ले जाते हैं तो उसके लिए जैसे फुहारे के माध्यम से हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम 5 किलोवाट से कम जो क्षमता है उसके हम सोलर पंप लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर जी देखिए, सरकार की इस योजना में आप बताइए कि जैसे 5 किलोवाट तक का जो अगर कोई सोलर प्लांट किसान लगाता है तो उसको कितना पैसा खुद का लगेगा और कितना सरकार देगी?
1: देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कुछ घटक हैं। तो पहले तो ये है कि अगर हम बात करते हैं तो बंजर भूमि हो या अनुपयोगी भूमि हो और कृषि भूमि हो तो उस पर छोटे संयंत्र जो है 5 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता के स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि किसान का जो कार्य है वो अनुमानित कितनी ऊर्जा की खपत पर निर्भर करता है और उसमें कितनी उसकी ऊर्जा लगती है, तो वो उस हिसाब से उसका चयन कर सकता है। जैसे सामान्यतः अगर हम 3 किलोवाट से शुरू करते हैं और 2 मेगावाट तक, तो उसके अलग अलग खर्च होते हैं और जितना खर्च होता है उसमें 90% तक की जो है सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाती है। और इसके लिए सरकार ने जो है ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। सरकारी क्षेत्र के जो भी बैंक हैं या निजी क्षेत्र के जो भी बैंक हैं, सौर ऊर्जा लगाने के लिए, संयंत्र ऊर्जा के लिए जो है कम ब्याज दर पर लोन भी देते हैं। तो किसान के पास उसकी अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता अनुसार पूरा सर्वे होने के बाद निश्चित किया जाता है कि इन्हें कितने किलोवाट की जो है संयंत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो है पूरी फॉर्मेलिटी होती है, जैसा कि सौर ऊर्जा का हम संयंत्र घरों में भी देखते हैं, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें आपको आवेदन करना पड़ता है और सारी चीज़ों की कह सकते हैं कि सुनिश्चितता करने के बाद आप अगर खुद से पैसा लगाकर करना चाहते हैं तो आप सीधे वेंडर से ये टाई अप कर सकते हैं। और वेंडर में भी आपने देखा होगा घरों में जब सौर ऊर्जा लगाई जाती है तो सरकार द्वारा उनको कह सकते हैं कि सुनिश्चित किया जाता है कि उनके अधिकृत वेंडर से ही आप जो है काम करवाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो वो उसको संभाल सकते हैं। उसके बाद वो संयंत्र स्थापित होता है, उसका बिजली घर द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बैंक द्वारा भी होता है अगर आपने उसके लिए ऋण लिया है, तो सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जब संयंत्र चालू जाता है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सौर ऊर्जा के उत्पादन से अपने दैनिक कार्य को कर सकते हैं। श्याम जी, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आपने बिजली के जितने यूनिट उत्पादित किए और जितने खर्च हो रहे हैं, अगर मान लो बच भी जाते हैं तो आप इसको उत्पादित बिजली को ग्रिड को बेच भी सकते हैं। तो इसमें एक पंथ और दो काज है, आप अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं साथ ही साथ इसमें आप ग्रिड में बेचकर कुछ पैसा भी कमा रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पास हमारे यहाँ पर देखें तो बहुत सारी जमीन है और उस पूरी जमीन का उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। तो जितनी जमीन में खेती कर रहे हैं, और जैसे कि हम सिंचाई के लिए बारिश हो गई तो मुझे लगता है कि उस पंप को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस समय जो बिजली उत्पादन होगा तो वो कहीं ना कहीं ग्रिड से अटैच रहता ही है, तो बिजली वो ग्रिड में जाती है और उसके यूनिट जो बनते हैं उसका पैसा किसानों के जो बिल आता है उसमें से लेस हो जाते हैं। अब किसान को ये जो कनेक्शन है बिजली का वो लेना जरूरी होता है इसके, और उसका कारण ये है कि देखिए जो जमीन के अंदर जो गहराई में पानी है उसके लिए ज़्यादा पावरफुल पंप की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो मान लो किसान ने 5 किलोवाट का सोलर लगाया तो उससे वो पंप नहीं चलेगी, तो सिर्फ 5 किलोवाट तक हम जो डिग्गी का पानी है उसको फसलों तक ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अभी लाइट की उपलब्धता है तो हम उस पानी को जमीन से निकाल करके ऊपर डिग्गी में किसान भर लेते हैं, और जब वो जरूरत पड़ती है तो सोलर के माध्यम से वो सिंचाई या फुहारे के माध्यम से हम उन फसलों तक वो पानी पहुंचाते हैं। अब यहाँ फायदा ये होता है कि जैसे कि बारानी खेती है तो कई बार बारिश भी अच्छी हो जाती, नहीं होती तो वो सोलर वाला प्लांट है ही तो उससे सिंचाई कर सकते हैं, और बारिश हो गई तो बिजली की बचत हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो सर जी, यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो किसान की फसल को सुनिश्चित उत्पादन हो सके, अच्छा उत्पादन हो, और नुकसान से बचाने के लिए सूखे वगैरह जो पड़ते हैं उससे बचने के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इतनी सरल है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि मान लो 10% किसान को पैसा देना है, अगर वो भी नहीं है तो ऋण की सुविधा उपलब्ध है, किस्तों में वो
1: दे सकता है। इसमें ये एक और यहाँ पर जो बात हो रही है ना संयंत्र लगाने की, तो इसमें अब डीजल पंपों की जगह स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगवाएंगे, ताकि क्या है कि जो कैपेसिटी और जो खपत है वो उसके अनुकूल हो। अगर आपने कृषि के इस कार्य में अगर डीजल पंप पर आपने सोलर से उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो जो है एक कह सकते हैं पावर का मैचिंग नहीं हो पाता है। तो सरकार चाहती है कि आप ऐसे सोलर पंप ही लगाएं जिससे वह सौर ऊर्जा के माध्यम से ही चल सके।
0: हाँ, ये बात आपने ठीक कही। कई बार जो हमारे किसान भाई सोचते हैं कि मान लो सोलर उपलब्ध नहीं है, मान लो जब धूप होगी तभी तो वो चलेगा, तो वो क्या करते हैं डीजल वाले जनरेटर भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और उनका इस्तेमाल काफ़ी क्षेत्रों में हो भी रहा है। तो उनका ये मैचिंग का जो होता है ना तभी वो वर्क करते हैं। तो कई बार क्या डीजल वाले और सोलर वाले अलग अलग होते हैं, और इसमें फ़र्क ये था सोलर जी, आपको टेक्निकल चीज़ें अगर बताऊँ तो जो जनरेटर वाली बिजली होती है वो मोटर चलती है एसी से, और सोलर वाली जो मोटर होती थी वो डीसी मोटर हुआ करती थी, इसलिए वो नहीं चलती। तो अब आने वाले समय में सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को एसी जो पंप है वो उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे क्या होगा कि वो जनरेटर से भी चल सकेंगे और सोलर से भी चल सकेंगे। तो अब टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या जो आपने बताई वो भी दूर हो जाएगी।
1: हाँ, और इसमें एक और चीज़ है कि मौजूदा ग्रिड कनेक्शन जो होता है कृषि क्षेत्र में, उन मौजूदा ग्रिड कनेक्शन कृषि पंपों को सोलराइजेशन करने की भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत होगी, ताकि जो सारा काम है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से ही हो। और अगर हम इसमें सब्सिडी के गणित की बात करते हैं तो सोलर पंप लगवाने पर कुल लागत जो होती है उसका 90% अनुदान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर दिया जाता है।
0: बिल्कुल।

0: क्योंकि जैसे राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के मामले में हब बनता जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो योजनाएं हैं वो काफी हद तक लाभदायक है, और उसके माध्यम से जो है हम काफी किसानों को सहूलियत दे सकते हैं। आप देखते हैं कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे से जब धूप शुरू होती है तो 7 बजे तक सूर्यास्त नहीं होता है, तो इस दरमियान आप देखें कि कितना बिजली उत्पादन हो जाता है। हमने देखा है अक्सर घरों में जब 5 किलोवाट के जिन लोगों के सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं वो दिन में लगभग 30 से 35 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं, और उनका जो खर्च देखा जाए तो वो एक तरह से माइनस में हो रहा है और बिजली जो है वो सरप्लस बच रही है। तो किसानों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, और किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में जो कनेक्शन तो दिए हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजली की उपलब्धता के आधार पर जब वितरण होता है तो रात में भी होता है, तो किसानों को रात में जागकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन सोलर सिस्टम में क्या है कि आपको रात और दिन का कुछ नहीं है, आपको जब आवश्यकता है कि भाई हमें दिन में ही खेतों में बुआई के बाद अब सिंचाई करते हैं पानी डालना है, तो आप दिन में ये काम कर सकते हैं, आपको उसके लिए रात का बिजली के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बस जरूरी ये है कि उसके सारे जो संयंत्र हों और जो चीजें हैं वह कम से कम उस लेवल के हों जो सौर ऊर्जा से मैच करते हैं।
1: और शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती है कि किसानों के जो फसल उत्पादन हो रहा है उसकी लागत कम हो और फसलों का उत्पादन सुनिश्चित हो। अब इससे फायदा क्या है, देखिए मैं किसानों भाइयों को बताऊं कि अगर आप सोलर लगवाते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। दूसरा, जो फसलों को प्रॉपर सिंचाई भी मिल सकेगी। एक तीसरा और भी महत्वपूर्ण, अगर मैं बात करूं, कोई किसान अगर इस्तेमाल करना चाहे तो आने वाले समय में जो ट्रैक्टर हैं जो डीजल की खपत करते हैं वो अब यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर शुरू हो चुके हैं और वो अभी छोटे बड़े जिस साइज का चाहिए किसान की क्षमता के अनुसार वो ले सकते हैं। तो शरद जी, जो सोलर दिन में अगर यूज नहीं आ रहा है तो वो अपने ट्रैक्टर को चार्जिंग के लिए उस सोलर का इस्तेमाल कर सकेंगे किसान भाई। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है और मुझे लग रहा है कि जैसे कुसुम योजना हमारे क्षेत्र में तो बहुत सक्सेस रही है और पूरे देश में मुझे लग रहा है ये सफलता इसकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं तो फील्ड में गया हूँ तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो फसल ये सोलर के माध्यम से यहाँ पर हो रही है वो अनार की फसल हो रही है, खजूर की हो रही है, और इसके अलावा जीरा और ईसमगोल,
0: जी
1: और इसके अलावा मूंगफली की फसल में भी यहाँ पर जो सिंचाई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और सब जगह यहाँ पर ऐसे सैकड़ों किसान हैं, सैकड़ों क्या, मुझे तो लगता है हजारों होंगे जो कि सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सोलर उनके लिए एक वरदान बनता जा रहा है। तो जो सिंचाई के बिना जो जमीन यूं ही खाली पड़ी रहती थी, अब किसान भाई क्या करते हैं, जैसे नहर का किनारा है तो अभी बारी है तो पानी आ रहा है तो पानी को वो स्टोर कर लेते हैं डिग्गी के अंदर। अब जब बारी नहीं है उस समय मान लो फसल में पानी की जरूरत पड़ी तो पानी कहाँ से लाएंगे, तो इस पानी का इस्तेमाल वो फसल के लिए कर रहे हैं। यानी देखिए, अब जो बारी तो सुनिश्चित होती है कि भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद कितने महीने बाद आपको पानी मिलेगा, और उस समय फसल को जरूरत नहीं है पानी की, तो उस पानी को ऐसे ही वो बारी बेकार चली जाती थी, तो किसानों ने वो पानी को स्टोर करना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो डिग्गी बनती थी ना उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा होती थी, 3-4 लाख 5 लाख तक की वो लागत आती थी, तो सरकार ने उस डिग्गी को बनाने के लिए भी 75% तक सब्सिडी दे रही है।
0: अच्छा,
1: तो कृषि विस्तार केंद्र है हमारे यहाँ पे जैसलमेर में भी है, तो वहाँ पर किसान जा रहे हैं और उस डिग्गी बनाने के लिए वो अप्लाई करते हैं वहाँ से, और वो अपनी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। यूँ कहें कि डिग्गी एक वरदान है, जिस तरह से कुसुम योजना वरदान बनी है।
0: तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आप सौर यंत्र जो लगाते हैं उसके बाद अगर आप डिग्गी निर्माण कर लेते हैं तो पानी का एक अतिरिक्त स्टॉक होगा, और आप फिर चाहे आपके पास कृषि कनेक्शन पर बिजली उपलब्ध हो या ना हो, आप जब चाहें तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी है कि कई बार जैसे किसानों की खेती बाड़ी के हम सिलसिले में हमने देखा कि उनके पास जो पंप होते हैं उसमें ज़्यादा हॉर्स पावर्स के होते हैं, तो उसमें बिजली की क्षमता के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो अगर आपने बिजली के रहते हुए भी अगर डिग्गियों को भर लिया और फिर आप सोलर की सहायता से सिंचाई का काम करते हैं, तो इसमें दोनों तरह से आपका काम हो जाता है, बिजली की उपलब्धता का भी आपने लाभ लिया और बाद में अपने उस डिग्गी को भर के बाकी के अन्य समय में आप अपनी सिंचाई का काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें जो कुसुम योजना की हम बात कर रहे हैं इसमें दो चीजें और भी हैं। पहली तो ये है कि इसमें बिजली और डीजल से मुक्ति हो जाएगी, किसानों को महंगे डीजल या बिजली की समस्या

0: से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है।
1: और सर जी एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ये योजना है, ये जो सौर प्लांट जो लग रहे हैं जैसलमेर में, जो किसान भाई तो लगा ही रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, और बाकी जो यूँ कहें कि हमारे घरों तक बिजली पहुंच रही है, तो ऐसे मामलों में हमारा ये राजस्थान हब बनता जा रहा है। जैसे कि आपने बात की थी घरों के अंदर भी अगर आप सोलर प्लांट लगवाते हैं तो वहाँ भी सब्सिडी मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है यहाँ पे कि जो फसलें ज़्यादा पानी मांगती थी उनका उत्पादन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। जैसे हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ ऐसी फसलें होती थी, नकदी फसलें जिसको कहते हैं, जिसे कम पानी की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसी फसलों का उत्पादन किसान भाई यहाँ पर कर पा रहे हैं जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर उनकी बिक्री भी अच्छी है। खासकर हम बात करें जैसे कि हरी सब्जियाँ भी उगने लगी हैं यहाँ पर, हरी सब्जियों के अलावा यहाँ पर जैसे गेहूं और चना, इसकी खेती खूब मात्रा में शुरू हुई है, और यहाँ पर चने के लिए जो ये मिट्टी है और यहाँ पर यूँ कह के क्लाइमेट इतना अच्छा है कि फसल का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होने शुरू हुआ है। अब गेहूं को तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोगों ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात सर जी एक ये है कि जो हमारा ये क्षेत्र है अभी भी रासायनिक खादों से दूर है, कीटनाशकों से दूर है, तो यहाँ पर जो फसलें कीटनाशकों के रहित या रासायनिक खादों के बिना उत्पादन हो रहा है, तो इनकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो अच्छी फसलें हैं। तो आपने देखा होगा कि कहीं हम फसलें मान लो सब्जी खरीदने जाते हैं और कह दिया कि भाई ये तो यहाँ की उगाई है, यहाँ का आसपास गाँव की है, तो हम पहले उसको खरीद लेते हैं जो आसपास
0: और
1: के,
0: वो दिखती भी है
1: बिल्कुल अलग
0: जिसमें
1: दिखेगी, अलग तरह
0: अलग से दिखती है।
1: की, और उसका स्वाद और खुशबू दोनों ही अलग होते हैं। तो एक तो वो फ्रेश होती है, ताज़ा होती है, कि मान लो शाम को किसान ने मंडी में भेजा तो सुबह हमें मिल जाती है। दूर दराज के क्षेत्रों से जो फसलें आती हैं, सब्जियां आती हैं, या तो कोल्ड स्टोरेज की होती हैं, 2-4 महीने उसमें रखी रहती है फिर हम तक पहुंचती हैं, या नॉर्मली 4-5 दिन तो पुरानी हो ही जाती हैं, तो ये उसका टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो अगर इस क्षेत्र के लिए किसान भाई ये उत्पादन करते हैं, सब्जियां हमको मिलती हैं, तो ना हम सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से और यूँ कहें कि वो सब्जियां गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छी होंगी, वो किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि उनका मूल्य उनको अच्छा मिलता है। तो किसान जो इंतजार करते थे कि भाई जीरे की फसल बिकेगी या रायड़ा बिकेगा तब पैसा आएगा, तो इनसे क्या होता है कि रेगुलर आमदनी शुरू हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: जैसे टमाटर है 12 महीने ये चलता है, हरी सब्जियां पालक गोभी मेथी ये बैंगन
0: और
1: टमाटर ये
0: सीजनेबल जो
1: सारा,
0: होता है तो हम उसको उगा ही सकते हैं।
1: हाँ, तो ये 12 महीने इससे पैसे की आवक बनी रहती है, तो जो रोज के खर्चे होते हैं किसान के वो इससे निकलते
0: पूरे
1: रहते
0: हो
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: तो कुल मिला के बात करें तो ये जो कुसुम योजना सरकार के द्वारा जो लागू की गई है, इसके किसानों की आमदनी बढ़ी है, किसानों को विश्वास बढ़ा है, किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, और जो फसलें उगाई जा रही हैं वो भी बेहतर गुणवत्ता की, और अब उनको ये डर नहीं है कि बारिश नहीं होगी तो हमको उत्पादन नहीं मिलेगा।
0: और ये इसमें अतिरिक्त आय की भी बात होती है कि जैसे आपने अगर मान लीजिए बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाया है तो किसान लगभग 25 से 27 वर्ष तक नियमित आय कमा सकता है।
1: और एक चीज और ये है शरद जी कि अब सरकार ने एक योजना और भी शुरू की है सोलर की खेती के नाम से, तो भविष्य में जो खेती योग्य जमीन नहीं है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती, वहां पर आप सोलर की खेती कर पाए, वहां पर
0: बिल्कुल
1: सोलर प्लांट लगा
0: लगा
1: करके
0: सकते हैं।
1: और वो बिजली सरकार को दे पाएंगे। तो कुल मिला के सरजी बात करेंगे अपने भारत के विकास की, अगर भारत को विकास करना है और तो किसान कहीं विकास की दौड़ में पीछे ना छूट जाए, तो गांव का भी विकास जरूरी है, किसानों का भी जरूरी है, तो सरकार हर किसी के लिए योजना लागू कर
0: लाकर
1: रही है।
0: उनको लाभ दे रही है।
1: और आज की जो योजना थी वो किसानों के लिए, जो हम यूँ बात करें कि जो सोलर लगाओ जिसमें कुसुम योजना नाम है, और अपने जैसे बता के ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई
0: और
1: थी।
0: चलते चलते इसमें हम ये बात करेंगे कि इससे जल संरक्षण भी होगा और सौर ऊर्जा से चलने वाले जो पंप है वो जरूरत के अनुसार दिन में सिंचाई करेंगे तो वो काम आसान होगा। तो आप ये भी जल संरक्षण का काम भी इससे कर सकते हैं। अब रही बात इसमें आवेदन करने की, तो योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने राज्य की नोडल एजेंसी जैसे कृषि विभाग या नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और उस ऑनलाइन आवेदन में जो जो चीज़ें कागजात के रूप में मांगी जाती है वो आप वहाँ पर सबमिट करिए, और उसके बाद जब सब चीज़ें वेरीफाई हो जाती है तो आपका जो सोलर पंप लगने का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और हम मानकर चलते हैं कि ये सोलर पंप जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से सूर्य की तरह किसानों के भविष्य को और भी उज्जवल और प्रकाशित और प्रकाशवान करता रहेगा।
1: बिल्कुल, और मुझे लग रहा है किसान भी हमारे देश के विकास में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे।
0: तो आज की इस विकास यात्रा से मुझे शरद शर्मा और
1: श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का निर्देशन किया था श्री रामजीलाल मीणा ने और वाचन स्वर थे शरद शर्मा की। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जैसलमेर से हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म कलाकार का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार।

0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन

0: यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूके एनटीओ ने बताया कि यह हमला होदे इदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की

0: कंसर्न कर रहे हैं।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत।

0: कब छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: कब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है।

पहली नजर का पहला सलाम लेकर जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना फिल्म कर्ज का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से हमारा अगला कार्यक्रम।

0: शतज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1960, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन से, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता है। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोग को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट

0: के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीपी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन ऑफ फ्रूट स्टिक, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है। एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय सब पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है, कुछ एम्प्लॉय मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉय, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और यही बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल को कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आया है फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में एनिमल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर

0: इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
1: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग हम लोग भेजे थे। इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जी भाई, ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स अ लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के

0: विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती है।
1: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ है, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपने आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज ये पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती है, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती है, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप बुझती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है।

0: हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी। आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे PFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रेड्डी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुके थे और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेजिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है PFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आपको स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है, जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉल है। ज्यादातर ये यूरोप में होता है, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीव भी बनाए कि आपको भी स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीन

0: स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
1: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मांदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सीहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Sri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learned the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chand Sharma's life and he played on. Participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankarlal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: Today he is accompanied on tabla by Pandit Vinod Lele. Kailash Chand Sharma begins his flute recital with Raag Malgunji. Vilambit composition is set to ek taal and Drut composition is set to teen taal.

0: ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: You just heard राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा concludes his flute recital with राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। साउथ वेस्ट मॉनसून हैज इंटेंसिफाइड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड रेन थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स। द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इट्स फर्दर एडवांस इनटू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हरियाणा पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 days। Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Andheri, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defense manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, A new chapter is being written in Shivpuri's history today.
3: यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं,
2: नॉट ओनली मिसाइल प्रोपेलेंट बट ऑल्सो एक्सप्लोजिव मिसाइल असेंबली एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन शिवपुरी। दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन साउथ एशिया।
3: सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है।
2: मिस्टर सिंधिया सेड The project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravorty said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, They explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. In the ICC Women's T20 World Cup final, chasing a target of 151 runs set by England, Australia were 137 for the loss of 2 wickets in 15 overs at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natasha Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarter final at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल दिन की सभा में प्रातः 11:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।